सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह, सरकार बोले आप क्या तो बहुत प्यारा बाजा है। तो आप सरकार बोलते हैं कि क्या आपको बजाते आता है, बिलाल को बुला के बेशक, बोले बिलाल बिलाल बोलते हैं मेरे को बेशक बजा के आते हैं। बोले कैसे बजाते हैं, तो बोले क्या बोलते क्या बोलता है फिर, तो फिर बाजा आपने आप सरकार ने आप बाजा बजा।